0: 슬라 다이노 다 뭔가 주셈젠 챵텔란 뉴키다 미다다 미다 잘라딘데지 디 드리베 드리 제 드리베 도바 담부텐데 테빈 인데 셈젠 징바 두스지 데브르바 인데 럼차제제 차크텐데 차빈 인데 초 드야제 인인 디 메드메르 랭귀지 잘라심 두스 드브 드아레 दोवे चालाल छेचु मांगजी अरे दिए छरे अनिन दि गंजुन रोपे चेन रोखतु पातिप जिजे दि अन दिना एलु जिजे याल केजे जेन रुक्या निगंजु चालान दि मेदो मेरोसिनो दि याग पाकवे छियोनु नि खिति क्याप जिजे याल केजे जिजे
1: 牧人的手臂在插筒上方沉稳地抬起，又带着全身的力气落下。牧人每一次举起奶杵，都是在承接一份来自牦牛系统而慷慨的生命馈赠。牦牛乳汁中凝结的脂肪与蛋白，化作了酥油和奶渣，皮毛中蕴藏着温暖与坚韧，织成了遮风挡雨的帐篷与衣衫。脊背上承载的岁月与路途，驮来了远方的物资与整个家的迁徙。